नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध

0: आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

真等。शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं होता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोका के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 331 लंका कांड आज आप सुनेंगे। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 4। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुत

ಪತಿ ಅನುಶ್ರೀ ಪಾಠಕ್ಕೆ. ಸಾತ್ ಬಜೆ ಸೇ ಭೂಲಿಯೇ ಬಿಸ್ರೀ ಗೀತ 7:30 ಸೇ ಹಮ್ ಹೈ ರಾಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ, 8:15 ಪರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಔರ್ 8:30 ಪರ್ ಚಿತ್ರಲೋಕ್. सुबह 9:30 और रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर. आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की. आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकी सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग. संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की. दोपहर 11 बजे सुनिए विविधा के अंतर्गत रविन्द्र जैन केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, रविन्द्र जैन पर, जगजीत सिंह पर और निदा फाजली पर. 12:05 यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर. 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे से मन चाहे गीत. तीन बजकर 30 मिनट पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक वायलिन वादक, लेखन असद जैदी का, दिग्दर्शक मदन शर्मा का. शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा आज इस बातचीत का तीसरा भाग. संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक. पांच बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन. शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, आपको फिर से बता दे सुनिएगा श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, भाग 4, आमंत्रित कलाकार गायक और संगीतकार शिखर सेन, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की. फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला शाम 7 बजे से, सैनिकों की शौर्य गाथा. एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है कल्पना शेट्टी. शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज. हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका परिवर्तन, इसका पहला भाग, लेखक हैं कामना चंद्रन, निर्देशक हैं अनुराधा शर्मा. 8:15 पर चित्रलोक. 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार. 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात. और 11 बजे सुनिए विविधा. आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान. आज आप सुनेंगे लंका कांड भाग 331.

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 331, आपने सुना आज लंका कांड।

0: आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूं।
1: जी
0: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
0: जी हाँ, कृष्ण चंद्र डे उनका नाम था और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बांग्ला में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी, जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे। और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में। केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी।
0: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहे। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहां आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूं कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छाऊं, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी।
0: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी
1: जी,
0: तो उनके ही ऊपर वो फिल्म आया गया था
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छाव का ये गीत श्री कृष्ण चंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आंखें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं

धूमछाव फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनके गायन की विशेषता थी, क्या कारण था, इतने लोकप्रिय कैसे हुए?

0: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है
1: जी,
0: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं
1: जी जी,
0: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया। पर कुछ गायक थे जो मस्ती वाले गायक थे
1: जी जी,
0: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज में तत्व होता था,
1: वरदान मिला था,
0: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आपकी लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है, इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है
1: जी।
0: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने
1: जी जी।
0: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा मन की आंखें खोल। तो इस तरह का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूं इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाएं। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में फिल्म है पूरण भगत
1: जी।
0: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 या 1934 की फिल्म है और शब्द हैं जाओ जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल
1: जी।

करो भलाई सबकी, सब संसारी गुण गाएंगे, सब संसारी गुण गाएंगे।

0: श्रोताओं, आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे, उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं,

0: तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है
1: जी।
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूं ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में या और दूसरे बंगाली संगीतकारों के गानों में आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा।
1: जी आप सुनाएं प्लीज।

0: क्या बात है दादा, ऐसे लग रहा है कि अब तो
1: ये
0: आपसे यही
1: भटियाली
0: अनुरोध
1: का रंग
0: करूंगी।
1: है, मैं चाहता था कि श्रोताओं को थोड़ा सा इसका भी आनंद मिले, इसलिए
0: अब हम श्रोताओं से आपकी ओर से वादा कर रहे हैं कि अगली कड़ी में एक रंग भटियाली का जरूर सुनाएंगे। आप जो भी जानकारी देना चाहें, जो भी आप चाहें सुनवाएं, लेकिन एक भटियाली का रंग अगली कड़ी में जरूर सुनवाएं।
1: जरूर।
0: इस बात के साथ हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज हमने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झांझन, गोरे गोरे पाँव में झांझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल।

ऐसा मुखड़ा सब बोले हाय राम, होए होए सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम। सबकी लागी उस पे नजरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस।

0: कोई खबरिया, अपनी तो रहे कोई खबरिया।
1: 16 बरस की भाई उमरिया, 16 बरस की भाई उमरिया, 16 बरस की भाई।
2: शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आग फिल्म का गीत। बहसात लखनवी ने गीत को लिखा था और राम गांगुली ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए हमराही फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की, शब्दकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद अली की धुन थी। आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

नदिया के पार फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और चितलकर की, संगीतकार थे सी रामचंद्र। लीजिए अब सुनिए प्यार की जीत फिल्म का गीत, आवाज सुरैया की है।

0: भूल जाना सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कमर जलालाबादी ने बोल लिखे थे और हुस्नलाल भगत राम ने धुन बनाई थी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शमशाद बेगम की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे नौशाद अली की तर्ज। लीजिए आप सुनिए एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल हैं नक्षब के, संगीतकार हैं श्याम सुंदर।

हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके, एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे नक्षप के बोलते श्याम सुंदर का संगीत। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी को सविता सिंह का नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम।

0: पहले तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
3: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तराना फिल्म का गीत आपने अभी सुना शैलेंद्र सिंह और उषा खन्ना की आवाजों में। तिलक राज ने इस गीत को लिखा था, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि बहुत छोटा सा एक अंतराल लिया जाए, उसके बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
5: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
4: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
6: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
4: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मेरे सनम फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: मेरा अरमां भी रह जाए, हाय हमदम मेरे।
1: मेरी सनम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। लीजिए अब सुनिए सांझ को आज नहीं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। कुलवंत जानी ने गीत लिखे हैं, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई।

सांच को आज ने इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थीं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। कुलवंत जानी की बोल थे राम लक्ष्मण का संगीत। और इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और

0: लिए प्राकृति के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
3: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
4: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले

0: लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।

0: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनकी सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो न सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लैम्बर हुसैन पुरी और साथियों की। राजशेखर गीतकार थे और संगीतकार थे कृष्णा।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: देखो सवेरा पूछे जाना है कहाँ, ऊंचाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जावेद अली, दीपाली साठे और मधुवंती बागची के इरशाद का मिलके ये बोलते और अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

सुनील लोधी की आवाज में हनुमान अंश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये रचना एक पारंपरिक रचना आपने अभी सुने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। आइए इस कार्यक्रम में लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का।
1: वो दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई ओए दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी।

तेजस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रश्मित कौर और शाश्वत सचदेव की आवाजें थी। कुमार के बोल थे, संगीत शाश्वत सचदेव का था। यह है बार बार देखो फिल्म का गीत। आवाजें हैं अरमान मलिक और नीति मोहन की। कुमार के बोल हैं और अमाल मलिक का संगीत।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह साथियों मनाया जा रहा है, वर्ल्ड स्पेस वीक। हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला दुनिया का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ये मानवता के सपनों की उड़ान का उत्सव है। अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए रहस्यों का महासागर रहा है। ये 7 दिन पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोता है। जब एक बच्चा किसी कोने में बैठकर चांद को निहार रहा होता है, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में कोई वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहा होता है। ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम सीमाओं में बटे हों, हमारा आसमान एक ही है, हमारी धरती एक ही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के महत्व के प्रति जागरूक करना है, बच्चों और युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा पैदा करना ताकि वे इसके बारे में और सीख सकें। इसलिए भी मनाया जाता है, जिससे हमारी धरती और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के ज्ञान का सही इस्तेमाल करना हो। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मनाए जाने का ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। आंतरिक्ष शिक्षा, अनुसंधान और जन जागरूकता के कार्यक्रमों में दुनिया भर के देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमें ये संदेश देता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं। जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते रहें।

मोहित चौहान और अलीशा मेंडोंसा की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

फिर स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए परम सुंदरी फिल्म का ये गाना।

0: सचिन जिगर और विशाल मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की।

जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: देवकी पंडित की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का यह उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाए। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, येन केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आपने अभी सुना, आवाजें थी तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

20 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोक

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: नैना लागे।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

की गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: भी जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: यह है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, वो रबिश, इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए जी, पर जी। क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात जी। अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा

0: एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों
1: और
0: में।
1: ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
0: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा। उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स में, जिंगल क्वीन मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे
1: जी।
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी, जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका उसमें मेरा नाम पूर्णिमा है, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी है, मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही, तो कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में 2 पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम ताना नाना ताना तर तर ये दिल है दीवाना
1: जी।

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सरगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी,
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि परचांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक तो आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तू तू तू तू तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही हूँ।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गा सकती
1: है। ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ,
0: है
1: वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल,
1: कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना? लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
0: जी, जी।
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें,

0: कपबशी फिल्म का नाम है, तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: जी।
0: तो टेक्सचर ऐसा सच नहीं बदला। हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी।
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है तो।
0: जी,
1: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा सेठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचमदा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी, एक अलग रूप से जी
0: रूप
1: पाती,
0: से
1: उनके,
0: जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तु तु तु तु तु तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही। लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी,
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
1: बहुत
0: जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी
1: नहीं
0: करेंगे।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तु तु तु तु
1: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
0: जी,
1: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
0: जी,
1: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रेटजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
0: जी,
1: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना।
0: सही कहा।
1: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तु तु तु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की, हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना तो

0: मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी
0: के।
1: जी
0: मैं हूँ गांव की गोरी बाब रंग लहरी और गीता दत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू। तो वो बहुत कामयाब रहा।
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तू तू तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ, तुम कर दो ना वो सब। तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती है, है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ।
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके। सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं,
1: बात है, क्या
0: वो
1: बात।
0: तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं, महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की
1: हाँ,
0: होती है।
1: बिल्कुल
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर
0: हाँ।
1: का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस।
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना,
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी
1: बीवी नंबर वन।

0: मैं तो रस्ते से जा
1: अरे
0: रही
1: बाप रे
0: थी,
1: बाप।
0: है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
1: हाँ, ये एक अजीब बात है कि
0: हाँ,
1: करिश्मा को मेरी
0: गजब
1: इनफैक्ट
0: गजब।
1: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
0: क्या
1: कि
0: बात
1: किसी
0: है।
1: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
0: हाँ,
1: खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो
0: हूबहू,
1: एक्सप्रेशंस,
0: हाँ हूबहू
1: मैं खुद भी मतलब शौक में
0: जी।
1: हूं।
0: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना,
1: हाँ
0: कितना
1: बाप
0: तो,
1: रे,
0: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है वो आदमी, इंसान ही
1: उसमें भी
0: बेकार है।
1: देखिए करिश्मा का एक एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका है ना, वो सिर्फ, मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, छोड़िए। खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो हम पर छोड़
0: ये
1: देते हैं।
0: जी।
1: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
0: क्या बात
1: तो ये
0: है
1: सब हमारे इनपुट्स होते
0: जी,
1: हैं,
0: बिल्कुल।
1: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारी इनपुट्स होती है, सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
0: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद की जो IQ है उसका जो
1: बहुत कम
0: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
1: यकीनन
0: रही है
1: यकीनन
0: उसे पकड़े। मतलब
1: यकीनन,
0: लगता है कि करिश्मा कपूर ये गाना गा रही
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
1: यहाँ
0: ले जाती है।
1: कुदरत कुछ साथ देता है,
0: हाँ
1: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
0: तो
1: बढ़ाते हैं,
0: आप
1: ये
0: कहें
1: मेरा
0: तो यही
1: मानना।
0: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
1: बिल्कुल,
0: लिया जाए,
1: प्लीज
0: हमारे
1: प्लीज
0: श्रोता भी थिरक लेंगे।
1: प्लीज।
0: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड,
0: आई एम
1: वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही हूँ, इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि
1: जी, जी.
0: मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं,
0: उस
1: मैंने ये दुख
0: गायिका
1: कभी किया भी नहीं मंदाकिनी जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में, हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे?
0: और उन्होंने सोचा भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, अभी भी गा रही हूँ
0: जी,
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
0: जी,
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया, मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे ते पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला देव बाई पावला जीवच कहिवरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया, मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा। पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी, अभी ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूं, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास, वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा, बाजा मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी, ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है,
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
1: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने

0: लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी,
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
1: जी।

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो और
1: तो मराठी गाने बस, मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से बहुत ज्यादा, लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली, नेपाली,
1: जी जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
0: मराठी,
1: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
0: हाँ,
1: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता
0: हाँ
1: पड़ना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: ऊंची है बिल्डिंग, टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बन है, टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं, टाडा रा रा रा रा रा रा, आ जा आजा, बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: जी अनु मलिक के साथ
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
0: जी।
1: पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू

चमदा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ, फर्क सिर्फ माहौल।

0: महसूस हो रहा है। यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी, हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
1: बेसिक्स बहुत,
0: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को, बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलोगे कि अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी, या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है,
1: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
1: हो जाए,
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है।
0: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
1: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर,
0: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
1: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार,
0: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो। तो हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको,
1: हाँ, करियर जो बनता
0: है, हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
1: जी। एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए,
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
0: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी, उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: पर आज का ये मौका मैं नहीं गवाना नहीं चाहती,
1: और हम भी मौका नहीं गवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: धड़काए, मिस्टर लवा लवा मेरी जान ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद करते।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है।
2: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना, जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा।

0: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते हैं, तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी।
1: जी,
0: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
0: प्लीज। चने के खेत में।
1: अरे।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन।
2: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत
0: जी,
1: आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजुषाएं खुलने वाली हैं।
0: जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा।
1: हाँ।
0: हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है।
1: हाँ।
0: उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
1: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं।
0: जी मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को स्मृति दिवस, सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविन्द्र जैन।
1: रविन्द्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविन्द्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर से रविन्द्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविन्द्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कम्पोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: हाँ। और रविन्द्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविन्द्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तली फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविन्द्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविन्द्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविन्द्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविन्द्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी और रविन्द्र जैन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए, तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविन्द्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविन्द्र जैन से सुधांशु शेखर की यह बात।

0: बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे जिन दिनों हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, ओंकार नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियां उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं, उनमें यूं था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा। और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी,
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
2: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
1: जी,
2: तो उसका कोई न कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
1: जी,
2: या फिर राम तेरी गंगा मैली का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
1: प्यार का सावन में जी हाँ,
2: जी हाँ प्यार का सावन में
1: जी,
2: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है
1: जी।
2: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
2: जी,
1: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी तो उनसे, यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया
2: जी हाँ जी हाँ,
1: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
2: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाएं तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
1: संगीत भारतीयों के जीवन में, यानी हमारे जन्म से पहले से
2: जी
1: शुरू होता है, ठीक है ना
2: जी,
1: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है, तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है। और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
2: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुनें, गाने की धुनें पहले बना दी जाती हैं
1: जी,
2: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
1: जी,
2: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
1: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं, समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना
2: जी,
1: गजलों का भी, गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
2: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
1: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे

0: परिवार से मुझे मिला है। मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य में काम किया। तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है। तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें नज़में नाज शरीफ हम इस तरह की चीजें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
1: अनुवाद काम।
0: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में।
1: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
0: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में। मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
1: जी,
0: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ।
1: बंगला पे, उर्दू पे,
0: जी,
1: हिंदी में कर ही रहे हैं।
0: जी जी, हिंदी उर्दू तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है। वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
1: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
0: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है। अच्छा, तो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशोदास जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
1: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
0: मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान है,
1: अपनी भाषा होती है। तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा
0: में? उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए
1: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती।
0: जी नहीं।
1: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
0: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं। जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
1: जी
0: सीता माता को कि वे राम जी के भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूर्य।

खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को

0: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
1: और जयंत जी, रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविन्द्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती हैं। रविन्द्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलेडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविन्द्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओ, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों न हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्रीगंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थीं, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थीं, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुनें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
2: जी,
3: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
2: जी।
3: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
2: जी,
3: वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
2: जी।
3: तो अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
2: सही बात,
3: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
2: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोट क्यों नहीं बनाया
3: जी,
2: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
3: थोड़ा सा असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
2: जी
3: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
2: अच्छा, और एक चीज अब खासतौर पर मैं

0: गुप्ता जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
1: जी,
0: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
1: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान बिल्कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
0: जी,
1: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफी हेल्प मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
0: अच्छा, तो ये
1: वो तो मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे।
0: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
1: नहीं,
0: हाँ। जी,
1: मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हो, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसकी मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो
0: जी,
1: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
0: जी जी, एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
2: ये तो देखिए अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं जिसमें उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं 3 मिनट में खत्म भी हो सकती है
0: जी।
2: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे 2 दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे
0: जी,
2: क्योंकि इतना वक्त नहीं है ऑडियंस के पास भी, इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों
0: जी,
2: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
0: अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसा ज्यादा नहीं।
2: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये?
2: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
0: जी।
2: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी कि फीमेल एंगल शेर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेर में हो, जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
0: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
2: हाँ, एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
0: जी,
2: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में, तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
0: जी हाँ जी,
2: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में, तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए, 7000 आदमी हॉल भरा हुआ, या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी, 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए, वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया। वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहां पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहां फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
0: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी
2: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आपकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
3: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी, और श्रोताओं ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी। और देखिए, यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहेब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज दूँ और आपसे क्या क्या सवाल करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
3: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा

एक हादसे का शिकार हो गई। मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जी होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मों सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना आदिमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद आदिमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि च्वाइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहाँ वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है, और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख मिचोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता, तो मैं कमाल अमरोही के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की जरूरत है।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है?
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली

0: घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई दर देख के चल।

कभी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बाहर है हप हप, आता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया।

0: और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज में SH बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वाधिकिया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज

0: मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वद किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दरो दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी चांदनी को उतरते देखा था, चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें, कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को, कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर, उसी दर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी दर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों, हम जहां हैं आज या हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता, उनकी दरों दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सौंधापन साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत, हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओं, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहाँ की गई पढ़ाइयाँ, तो बहुत सारी यादें हैं। और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं, तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती हैं घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नम आंखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: नूतन और देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाए नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी, जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोता, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है, और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है, और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाज़ें आती थी क्या,

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की, महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहाँ मेरा जन्म हुआ आज भी गाँव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूँ। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप ज़रूर हमसे ताज़ा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नज़र आए तो अच्छा लगता है, बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाज़ार में मिल जाता है पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और नहीं वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है, वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता

ने श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं पर हाँ काफी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ ज़रूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी ज़िंदगी बसती है। बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाज़ें, हंसी आंसू, त्यौहार और ना जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ

यादें हों तो आप ताज़ा कीजिए। लिखते हैं आगे कि दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों किस्साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्म

गया ये गीत था सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन हैं। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहां हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा अलमारी आला या कारनेस हुआ करता था, किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहाँ आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे? एक तो ये सवाल आपको बताना है और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ जो घर जहाँ से हम आए या पुराने घरों में गांव के घरों में वहाँ पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे, उनमें से कौन आपको प्यारा था? या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था? तो आप हमसे ज़रूर ये बातें ताज़ा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी ज़रूरत पड़ती थी, ना ही फ़ोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी यानी प्रकृति की हवा जो होती थी वो वही काम करती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने का जो एक कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है। ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है। और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था नाना जी का, और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे, हम लोग रेडियो खेलते थे। तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मजा आता था, उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहां बचपन बीता। वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें भिगरती तो सब भीगा भीगा सा लगता। वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपटकर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

0: में बंद भइल है राम चिरई के जियावा उदास।
1: ये गीत था श्रोताओ गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ी हुई इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और कुमकुम नज़र आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी ज़रूरी है जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा हो जाता था, रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन हैं वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था, बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली, पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे, जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफ़ेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है, ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओ मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। साजन दहलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छोटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया, पुरानी यादों में खो गए, क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठ कर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है, उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओ। और जो घर की यादें होती हैं, घर की बातें होती हैं, वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत, इन दीवारों की मरम्मत आपको ज़रूरी लगती है? जहाँ कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था, ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओ कि किसी घर के सामने आप पहुँचे जिस घर में आपको जाना था, लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना? ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में हैं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद है जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल के हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहाँ भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहाँ पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओ, तो कुछ न कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा, उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनकी सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो न सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज के त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त निहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक

0: मानद स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल है। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की।

0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अल बहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के

0: चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि कुमकुम मोहित व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई गांवों में खिली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नवमी।

फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

आकाशदीप इस फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: सी रामचंद्र की तर्ज साहिल ध्यानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: दिल

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने। इस गीत को सुनना चाहते थे काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे। नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंजारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का। इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गीत आपने सुना नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसर जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये फरमाइश थी ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद, ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सल, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेन्द्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा ऋतु, अभी सुनाता हूँ।

0: पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तो कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे, बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो, ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: है इस महीने।

0: की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ, ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ, वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे, तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
1: होंगे मगर।
0: अनाम।
1: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद

0: वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है, बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छे आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो मां, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर मां मेरे लिए संसार का अर्थ ही मां है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मां, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
3: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा

0: संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता। मां कहती, खाना खा। अनाम आता, खाना खाता। मां कहती, वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
1: आ, आ, आ, अनाम, खाना खा, चल, घर चल, जा, बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो, सो जा, चल, उठ, उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल, उठ, चल, आ अनाम, आ, नाटक कर, कर, नाटक कर, अच्छा आदमी कर, चल, तू, वो सब तू, हंस, खुलकर हंस, आ, बाजा बजा, वायलिन बजा, बस, बंद कर, अब बंद कर, चल, कहना मान, आज्ञा मत डाल, खुश रह, मासूम मत रह, खुलकर रो, खुलकर रो, खुलकर रो।
2: मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी मुझे बच्चा बहुत अच्छा नहीं, अकेले ही जाना। मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा। मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए कॉल नहीं। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
3: के लिए कॉल अनाम। अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सपनों में डरो मत बेटा, डरो मत।
4: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस रितु, अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम, दिन भर से कहाँ गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे।
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारा गर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है, जाओ।

ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों मां, ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं, आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया।

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और बोझिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। तीन दिन भर आवारा गर्दी वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूँ, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव की रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा। मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।

0: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
1: ये तुम्हारी भूल है माँ, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
2: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
0: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
3: अनाम भैया।
1: हाँ ऋतु।
3: वायलिन सुनाओ ना।
1: ऋतु आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
3: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: सुनते हैं। अनाम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी उसी के साथ हैं।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के मां बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।
0: अभी भी पड़ोसी ने आकर खबर दी है कि वायलिन बजा बजा कर अनाम ने अपनी उंगलियों को घायल कर डाला है। तमाम वायलिन उसकी उंगलियों के खून में भीग गया है।
1: प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
5: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
5: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
5: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
5: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
5: फिर तबला सिखाया।

0: सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
1: जी।
0: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
1: बाप रे बाप,
0: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
1: और उसमें खेलना और
0: कुछ नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 0.5 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
1: ओहो,
0: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को मां कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
1: ओहो हो,
0: तो ये तपस्या होती है
1: जी,
0: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
1: बिल्कुल,
0: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
1: क्या बात है,
0: वो उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
1: वाह,
0: उसकी साधना है।
1: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
0: परमेश्वर। तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
1: जी जी,
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कव्वाल जो थे उन्होंने दी
1: जी।
0: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहां पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में, तमाम प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह,
0: और 17,000 रूपये का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रूपये का, और 17,000 रूपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8,000 रूपये कर्जा था।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी।
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टर,
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी,
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है आज के जमाने में।

0: चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
1: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
0: जी,
1: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मनोहरी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ,
0: जी
1: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
0: नोटेशन
1: लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
0: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
1: और उसकी नॉलेज होना,
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है।
0: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो में,
1: जी,
0: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या बजेगा,
1: मोस्ट प्रोबेबली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है।
0: जी,
1: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
0: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
1: वो चाहे बदल भी सकते हैं, क्योंकि ही इज दी सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
0: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी,
1: हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब, और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
0: जी,
1: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
0: वाह।
1: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
0: जी,
1: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
0: हाँ।
1: तो अब मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया, तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे। तो राज को पूछा, राज क्या था? तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, उन्होंने बताया पूरा सीन। डेढ़ मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो,
0: गजब।
1: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
0: ये मेमोरी सोनी जी की,
1: क्योंकि ब्लाइंड थे। तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वाजे फैंटास्टिक अरेंजर, फैंटास्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी. मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक. सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा. सुना ये कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां. ओके, टेक करो.
1: क्या बात है.
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है? नौशाद साहब ने, ये किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशनी. लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं.
1: जी जी जी.
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए. सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता. हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो एंड सो, वो अलग बात है. अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया.
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया. मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता.
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया.
1: अच्छा.
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ.
1: ओके.
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है.
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है. और उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ. जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा. अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाय मी. म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर.
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी, जी.
1: हॉर्न की आवाज आती है.

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के
0: नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पाटे जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी नंजी के साथ, बासु मुरारी आडियाबरन के साथ काम किया, एच डी के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को। वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी गाय प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम लोगों
0: भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया। तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,

0: हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए बम्बई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं यहाँ, मैं भी कार में था, तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया। और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ। फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना, लेकिन ये धनीराम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है
1: जी,
0: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे,
0: इसके
1: लिए परेशान।
0: किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो अरिजन के लिए बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: हाँ, लेकिन हो नहीं सका
1: जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी
1: डैडी, मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रूपये की या 450 रूपये की मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली, हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड
0: जो से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका, मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप
1: जी जी,
0: आशीर्वाद काबिल होना पड़ता है, लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और लगातार साथ रहा,
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए
1: जी,
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन के साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो तो है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमरुत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8,
1: और 1 चंद्रकांत
0: 9। गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे।
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: हाँ,
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: हाँ, चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं।
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।

0: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
1: क्या बात है,
0: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
1: जी जी,
0: तो सुन लीजिए आप
1: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ चार पांच महीने से चल रहा था,
0: एक जुमला बन गया था,
1: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से की वायरल वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी, मैं पिछले छह महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी की गलती हुई थी केवीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
0: क्या बात है,
1: ही लाइक ए फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी।
0: वाह,
1: फिर मैंने कहा केबीएन। सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े, वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी जी जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम क्या क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
0: हाँ।
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला
1: वायलिन सोलो का पीस था।
0: अच्छा,
1: सागर फिल्म।
0: जी।
1: तो जो वो कमलासन बजाता है।
0: अच्छा अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी जी जी।
1: तो मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते।
0: जी।
1: ना भी मारो टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे।
0: जी जी।
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, उत्तम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू टंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
0: स्नैप आ जाए,
1: तू हाथ से करना।
0: जी।
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
0: जी,
1: अभी ए,
0: हाँ
1: ये साउंड है
0: जी,
1: ये चाहिए, तार टूट गई।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो

0: की दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की। तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है,
1: हाँ हाँ,
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं नहीं वो पीस, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ हाँ।
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूजिक बना तब मुझे समझ में आया वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: नहीं याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

0: उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
3: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
7: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

फूलों की खुशबू में तेरा ही सुरूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज में डूबा ये नूर अच्छा लगता है, तू बोलती है तो लफ्जों में बहारें जागती हैं, तेरे लहजे का ये मीठा दस्तूर अच्छा लगता है, हवा भी रुक के सुनती है तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का दिल पर ये फितूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज जब छेड़े कोई भूली हुई गजल, हर एक नगमे में तेरा ये गुरूर अच्छा लगता है।

ख्याल से दिल में रोशनी बिखरती है, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी ही महकती है। तेरी नजर जो कभी मेरी नजर से मिलती है, वक्त कुछ पल के लिए यूं ही ठहर सा जाता है। तेरे कदमों की आहट जब सुनाई देती है, दिल की धड़कन में कोई गीत बहने लगता है।

मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाते हैं, चांद भी रात में कुछ और खुशनुमा रहता है। तेरी बातों में जो ठहराव है वो क्या कहिए, दिल को हर हाल में संभाले रहता है। तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है दुनिया, वरना इस दिल में कहां कोई तेरे अलावा रहता है। मैंने मांगा ही नहीं और कोई ख्वाब कभी, तेरा चेहरा ही मेरी चाहत का नजारा रहता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। तेरी हंसी छूती है जब मेरे ख्यालों को, दिल मेरा फूल सा खिला रहता है। तेरी आवाज का असर कुछ ऐसा है मुझ पर, दूर रहकर भी तू करीब सा रहता है। तेरे खामोशी में भी सुनता हूँ तेरी बातें, तेरा एहसास मुझ में समाया रहता है। तेरे आने की खबर भर से महक उठती है शाम मेरी, जैसे मौसम कोई खुशगवार रहता है। तेरे होने से सुकून मिलता है इस दिल को, तेरा ख्याल हर लम्हा मुझे थामे रहता है।

की आंखों का असर किस तरह बयान करूं। एक नजर थी मगर सदियों की तलाश मंजिल थी। तू मिला तो मुझे खुद से भी मोहब्बत होने लगी। तेरे आने से मेरे होने की मुझे वजह मिली। तेरे बिन भी तेरा एहसास मेरे साथ रहा, जैसे वीरान मकाम में कोई रोशनी की खिड़की थी। हमने चाहा भी नहीं इश्क हो इतना गहरा, फिर भी इस दिल में तेरी चाहत की बेकरारी थी।

परंतु जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

0: तेरी नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।
1: कहां से लाई हो जान।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

लीजिए सुनिए अगला गीत हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है अखियों के झरोकों से।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: समीर का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का। फिल्म का नाम है जमाना दीवाना।

0: दरवाजा खोलता हूँ तो वो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। नखमानिगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है मंजिल।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। गीतकार हैं विट्ठल भाई पटेल, संगीत है लक्ष्मीकांत तो प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है बॉबी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। समीर का लिखा गीत सुनिए, उदित नारायण, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, मिताली चौधरी की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है वक्त हमारा है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, कार्यक्रम की अगली पेशकश है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है विवाह।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। नगमा निगार है जावेद अख्तर, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है सागर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन।

6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। शाम 7 बजे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम होगा सैनिकों की शौर्य गाथा। आज सुनिए एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज साज और आवाज में सैक्सोफोन पर आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी धुने। कलाकार हैं सुरेश यादव। रात्रि 8 बजे हवा महल में आज नाटिका परिवर्तन का पहला भाग, लेखिका है कामना चंद्रा, निर्देशन है अनुराधा शर्मा का। 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है गायक शैलेंद्र सिंह पर। 10 बजे छाया गीत में आज आप सुनेंगे यूनुस खान को। कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 332वां भाग सुनिएगा। 6:45 इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला का 5वां भाग। कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार उषा खन्ना पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का 3रा भाग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दिन में 11 बजे संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे राग अनुराग। 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर। कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे।

कल दिन में 3 बजे सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है। कथा सुधा में सुनिए अमावस की रात का दूसरा भाग, सुकून भरे घर स्वच्छ घर, और व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला बफोरी। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए पीसीओडी आईवीएफ विषय पर डॉक्टर ज्योतिषा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का। प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले। एक बार फिर सुनिए कल सेहतनामा में आप सुनेंगे पीसीओडी आईवीएफ इस विषय पर डॉक्टर ज्योतिषा से की गई बातचीत।

मिनट पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कल आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है उमराव जान। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे नाटिका परिवर्तन का दूसरा भाग। लेखिका है कामना चंद्रा, निर्देशन है अनुराधा शर्मा का। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए। और कल रात 10 बजे छाया गीत में आप सुनेंगे सलमा सैयद को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आइए सुने जगजीत सिंह और साथियों को। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है खलनायक।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूं।
1: जी,
2: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
2: जी हाँ, कृष्णचंद्र डे उनका नाम था और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बांग्ला में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी, जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे। और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में। केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी।
2: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहे। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहां आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूं कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छांव, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी,
2: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी
1: जी जी,
2: तो उनके ही ऊपर वो फिल्म आया गया था
1: जी।
2: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छांव का ये गीत श्री कृष्ण चंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आंखें खोल।

0: फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनकी गायन की विशेषता थी, क्या कारण था, इतने लोकप्रिय कैसे हुए?
1: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है
0: जी,
1: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं
0: जी जी,
1: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया। पर कुछ गायक थे जो मस्ती वाले गायक थे
0: जी जी,
1: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज में एक तत्व होता था,
0: वरदान मिला था,
1: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आपकी लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है
0: जी।
1: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने
0: जी जी,
1: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू ले के हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा मन की आंखें खोल। तो इस तरह का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूं इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाएं। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में फिल्म है पूरण भगत
0: जी।
1: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 या 1934 की फिल्म है और शब्द हैं जाओ जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल
0: जी।

0: उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं, तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है
1: जी।
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूं ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में या और दूसरे बंगाली संगीतकारों के गानों में आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा
1: जी। आप सुनाएं प्लीज।

0: सब सरकार सुन जाएंगे पूरन नाम के लंग जाबो जाबो ए मेरे सानू जबो गुरु के लंग।
1: श्रोताओं, आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है

0: क्या बात है दादा, ऐसे लग रहा है कि अब तो
1: ये
0: आपसे यही
1: भटियाली
0: अनुरोध
1: का रंग
0: करेंगे।
1: है, मैं चाहता था कि श्रोताओं को थोड़ा सा इसका भी आनंद मिले, इसलिए
0: अब हम श्रोताओं से आपकी ओर से वादा कर रहे हैं कि अगली कड़ी में एक रंग भटियाली का जरूर सुनाएंगे। आप जो भी जानकारी देना चाहें, जो भी आप चाहें सुनवाएं, लेकिन एक भटियाली का रंग अगली कड़ी में जरूर सुनवाएं।
1: जरूर।
0: इस बात के साथ हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज हमने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता।

0: सर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: विशेष जयमाला।

भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से अलंकृत एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ 14 अगस्त सन 1920 को, और साथियों 30 नवंबर सन 1940 को आप रॉयल इंडियन एयरफोर्स में एक्टिंग पायलट ऑफिसर की रैंक पर कमीशन्ड हुए और भारतीय वायुसेना में 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जिसमें 1941 में दुश्मन सेना से बड़ी ही चतुराई और कुशलता से साहस के साथ जंग में लड़ते रहे एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर।

हमारे भारत देश के वीर जांबाज सपूतों की अनगिनत शौर्य गाथाएं हैं, जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, आंखें नम कर देती हैं और हम सबके दिलों में देशभक्ति की लौ जला देती हैं। एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर ने पहले स्वतंत्रता दिवस और पहले गणतंत्र

दिवस के मौके पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व किया था। ऋषिकेश मूलगांवकर उत्सुक पायलटों में से एक थे। बर्मा के मोर्चे पर कार्रवाई के दौरान उन्होंने कुल 280 घंटे, जी हां साथियों, 280 घंटे की परिचालन उड़ान की, जिसमें बमबारी, रॉकेटिंग और बंदूकधारियां शामिल थीं। जांबाज, साहसी, कुशल नेतृत्व वाले ऋषिकेश मूलगांवकर अद्भुत प्रतिभा के धनी थे।

सितंबर 1948 के अंत में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर ने नंबर वन ऑपरेशन विंग के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया और ज़ोज़िला युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस, परम योगदान, असाधारण वीरता और कुशलतम नेतृत्व के लिए भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से उन्हें विभूषित किया गया।

श्रोताओ, विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा।

1951 में एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर ग्रुप कैप्टन के रैंक में ऑपरेशंस के निदेशक थे। वो अरागन विमान के मूल्यांकन के लिए फ्रांस में थे और उन्होंने फ्रांस से सभी तरह के रास्ते में भारत के 4 अवार्ड सेनानियों की पहली उड़ान का नेतृत्व किया। भारतीय वायुसेना की दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए आप फ्रांस और ब्रिटेन गए। आप 1954 में मिग विमान उड़ाने वाले पहले पायलट बने। सन 1957 में उन्हें पालम के लिए स्टेशन कमांडर के रूप में मिला, जिसके बाद उनके पास नंबर 7 के नक्षत्र और नंबर 10 स्क्वाड्रन थे। बाद में सन 1965 के युद्ध के दौरान वो नागपुर के लिए बेस कमांडर थे। आपने हमेशा अपनी उड़ान की स्थिति बनाए रखी। यकीनन देश के इन जांबाज वीर सपूतों को देश कोटि कोटि नमन करता है।

0: श्रोताओं, विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के

0: आसमां को तुमने हम जब चले तो।
1: 1 फरवरी सन 1976 को उन्होंने भारतीय वायुसेना के वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में थी उड़ान सुरक्षा, जहां एक ओर उन्होंने उपायों को लागू किया तो साथ ही दुर्घटना दरों को नीचे भी लाए। ये अप्रतिम शौर्य, देशभक्ति, हौसला और जज्बा हमारे देश के वीर जवानों की रग रग में है।
0: अरे हम पंछी एक डाल के

0: भोले हा संग संग डोले जे संग संग डोले हम पंछी एक डाल के
1: 31 अगस्त सन 1978 को सेवानिवृत्त होकर महाराष्ट्र के पुणे शहर में बस गए एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर। 95 वर्ष की आयु में एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर ने अंतिम सांस ली। भारत के इन जांबाज अप्रतिम प्रतिभा के धनी वीरों को ये देश सैल्यूट करता है।

श्रोताओं, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख, स्वर शेफाली कपूर, प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए साज और आवाज। आज का साज है सैक्सोफोन, कलाकार है सुरेश यादव।

साथियों, अभी आपने सुनी सैक्सोफोन पर ये धुन। आइए सुनते हैं अब यही गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का, फिल्म का नाम है मेला।

आइए अब सुनते हैं इसी धुन पर आधारित गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम है जागते रहो।

0: सच है क्या सब सच।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
4: श्रोताओं, इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आपने सुनी साज और आवाज में सैक्सोफोन पर कुछ फिल्मी धुने और गीत। कलाकार थे सुरेश यादव। इंद्रधनुष कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कामना चंद्रा की लिखी नाटिका परिवर्तन का पहला भाग। प्रस्तुत करता है अनुराधा शर्मा।
1: शहर के बाहर एक आश्रम है जहां पंडित सर्वदानंद जी का निवास स्थान है। सर्वदानंद शहर के जाने माने पंडित और ज्योतिष विद्या के प्रकांड ज्ञानी के रूप में मशहूर हैं। उनके पास रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। एक से बढ़कर एक रईस अपना भविष्य पूछने उनके पास आते हैं, इसीलिए धन बटोरना उनका स्वभाव बन गया है और उसे अपने मजबूत सेफ में बंद करके रखना एक जबरदस्त शौक। सुबह का वक्त है, भक्तों की भीड़ लगी है।
2: तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो
3: प्रचोदयात्। देखिए पंडित जी अभी देवी पूजा में हैं। आप लोग शांति से बैठिए। आप लोग इतना शोर

0: करेंगे तो पूजा में विघ्न। आप लोगों का भविष्य बताना है कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। जबरदस्त ध्यान योग की आवश्यकता होती है। थोड़ी देर सब रखिए, लीजिए।
1: आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, प्रसन्न रहो। मुझे दुख है कुछ देर हो गई है, परंतु देवी पूजन बड़ा कठिन कार्य है। मन को पूरी तरह एकाग्र करके सहस्त्र जाप करना पड़ता है, तब कहीं जाकर देवी माँ प्रसन्न होती हैं। और जब तक देवी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, मैं भला भविष्य कैसे बता सकता हूँ।
2: धन्य हो महाराज, आप हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं। जो अशोक महाराज, आज हमारे टेंडर खुलने वाले हैं। अगर ये कंट्रैक्ट मिल गया तो वारे लारे हो जाएंगे। आप अभी देवी पूजा से निकले हैं, पहले मेरा भविष्य बता दीजिए ना प्रभु।
3: अरे भाई कमाल करते हैं आप, हैं? आए हैं सबसे पीछे और भविष्य सबसे पहले जानना चाहते हैं। अरे इस देश में क्यू या डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है या नहीं?
4: लेकिन आप लोगों के राज में इसकी उम्मीद करना महज बेवकूफी है।
1: राम राम राम राम, शांत रहिए आप लोग। देखिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
3: वाह
1: वाह, भविष्य जानने आए है ना, मैं बताऊंगा। देवी पूजन के पश्चात माँ सरस्वती मेरी जिह्वा में प्रवेश कर जाती है।
5: सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। इस वक्त आपके मुख पर जो कांति है, चमक है, उसे मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने चेहरे पर नहीं ला पाता। पंडित जी, कितना भी इमोशनल सीन हो, बस यही मार खा जाता हूँ।
1: धैर्य रखो, धैर्य रखो, चमक जरूर आएगी, परंतु पहले देवी का मन जीतना होगा।
6: पंडित जी, आप इन अमीर लोगों का भविष्य ही बताते रहेंगे या हमारा भी नंबर लगेगा?
1: देखिए इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। देवी आराम से बैठी रहिए, आपका भविष्य मैं बताऊंगा।
3: इनका भविष्य तो इस वक्त मैं भी बता सकता हूँ पंडित जी, बेटा होगा या बेटी। लेकिन समस्या तो हमारी नौकरी की है, हर जगह ना का बोर्ड।
1: भाग्य और प्रभु में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। कृपा करके अपने अपने स्थान पर शांति से बैठे रहें। रामेश्वर।
7: हाँ महाराज।
1: सबको नंबर दे दिए हैं?
7: जी महाराज।
1: ठीक है, अब सबको बारी बारी से अंदर भेजते चलो।
7: अच्छा महाराज।
8: स्वामी सर्वानंद की जय।
1: क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं अभिनेता जी। कारण मन की अशांति, अकुलाहट।
5: आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी, मन में जैसे तूफान उठता रहता है। आज सुबह 4 बजे नींद खुल गई तो गाड़ी लेकर सीधा इधर चल पड़ा।
1: नई पिक्चरों में तुम्हारे रोल और वैशाली से प्रेम प्रसंग की चिंता तुम्हें खाई जाती है।
5: पंडित जी आप तो अंतर्यामी हैं। चोरों का चोर अगर हिट ना हुई तो तेरा गाल मेरा चांटा भी पिट जाएगी, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, वैशाली मुझे छोड़कर चट्टन के कैंप में घुस जाएगी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो हमने रात कई घंटे तुम्हारी कुंडली को ध्यान से देखा, तुम्हारी फिल्में सुपरहिट होंगी। वैशाली के साथ जोड़ी बनी रहेगी।
5: पंडित जी
1: परंतु कुछ उपाय करने होंगे।
5: उपाय? उपाय आज से ही, बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए पंडित जी।
9: खर्चे की परवाह मत कीजिए आप।
1: नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तुम रोकड़ा जमा कर दो, प्रभु सब मंगल करेंगे।
5: महामंगलमय, महामंगलमय पंडित जी, माँ मंगलमय, तो आज्ञा दीजिए, आपके पास आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा पंडित जी नमस्कार।
1: प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आओ नरेश चंद्र, सब कुशल मंगल है ना?
10: नौकरी नहीं है तो कुशल मंगल कहाँ से होगी? पंडित जी कोई रास्ता निकालिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा।
1: मन यदि विचलित हो तो गीता का पाठ किया करो।
10: भूखे पेट गीता पाठ कैसे करूं? मेरा वर्षफल देखा पंडित जी?
1: देखा भाई, बड़े ध्यान से।

0: तुम्हारा मंगल अच्छा है, परंतु बार बार ये शनि ले डूबता है। कोशिश करते रहो, काम मिल जाएगा।
1: कब पंडित जी, खाली बैठे जीना दूभर हो गया है।
0: हो, तुम्हारा नाम नरेश है, परंतु धैर्य की बड़ी कमी है। हम शनि की दिशा मोड़ने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
0: देखो, रामेश्वर के पास पूजा अर्चन के लिए कुछ पैसे जमा करा देना।
1: मुझ गरीब के पास क्या रखा है पंडित जी?
0: अरे जो भी बन पड़े, पूजा का खर्च तो उठाना ही पड़ेगा, वरना फल कैसे मिलेगा। चलो अगले व्यक्ति को भेजो।
2: पगा लागू महाराज।
0: आयुष्मान भाव, कहो सेठ, धंधा कैसा चल रहा है?
2: अरे आपके होते बड़ा हमें क्या की चिंता महाराज, हमारा धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।
0: सुंदर, अति सुंदर। देखिए, पिछले वर्ष आपसे जो गुप्त दान कराया था उसी का फल है, वरना शनि की क्रूर दृष्टि।
2: बस बस, आप हमें ऐसी दृष्टि से बचाए रखिए महाराज।
0: अगर कहिए सेठ जी, तो अगले वर्ष के लिए महाजाप करवा दूं। रात आपकी कुंडली देख रहा था, लाभ ही लाभ है।
2: अच्छा।
0: परंतु शुक्र और शनि में कुछ अनबन है।
2: तो आप उसे काट डालिए प्रभु, ये 10 लाख का काम मारे कभी मिलना चाहिए।
0: मिल जाएगा करोड़ी मल जी, मिल जाएगा, परंतु दान पुण्य काफी करना पड़ेगा।
2: तो हम कहाँ पीछे अटले वाले हैं महाराज, आप बोलो तो सही। मुनीम जी रोकड़ा जमा कर जाएंगे, रोकड़ा। इस वक्त तो ये गड्डी स्वीकार कर लो महाराज, पगा लागू महाराज।
0: आयुष्मान भाव।
2: अच्छा,
0: आओ ज्ञानवती, आओ। कैसी हो
3: पंडित जी? आपका आश्रम न हुआ, राशन की दुकान हो गई, जरा भीड़ तो देखो।
0: अरे वहाँ पेट की भूख का सामान मिलता है, यहाँ मन की भूख का।
3: यहाँ तो रात दिन यही चिंता खा रही है कि इस बार लड़का होगा या लड़की। 5 लड़कियों की माँ जो ठहरी।
0: अरे भाग्य पर भरोसा रखो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है जरूर। अब हम भगवान तो है नहीं कि ठीक से तारीख भी बता दें।
3: सो तो ठीक है, पर हम भी आखिर कब तक जोखिम उठाते रहें?
0: अरे जोखिम काहे की, पैसे रुपयों की कमी तो है नहीं।
3: सो तो प्रभु की दया है, पर पालने में मेहनत नहीं लगती? इस बार तो बेटा ही होना चाहिए पंडित जी।
0: हो जाएगा, हो जाएगा। अरे पिछली बार ही होना चाहिए था, पता नहीं कैसे कसर रह गई। हाय हाय, चिंता मत करो, हम महामाया का पाठ करवाते हैं, देवी माँ अवश्य प्रसन्न होंगी।
3: बस फिर कुछ नहीं मांगूंगी, एक बेटा हो गया तो सब साथ पूरी हो जाएंगी।
0: अवश्य होगा, अवश्य होगा। पूजा के लिए धनराशि
3: इतने से रखिए, बाकी ये आकर दे जाएंगे। बस आज से ही देवी पूजन शुरू करा दीजिए।
0: अच्छा।
3: जय माँ, जय भवानी,
0: जय।
3: नमस्कार पंडित जी।
0: पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। आइए आइए नेताजी, पधारिए।
4: अरे पंडित जी महाराज, आप इन ऐरे गैरों को इतना वक्त दे देते हैं।
0: ऐरे गैरे, जनता जनार्दन है ये, आपको बनाने और मिटाने वाली।
4: हमें तो सदा मिटाया ही है भाई, 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, सरकार बनाना तो दूर की बात है भाई, तगड़ी अपोजिशन भी नहीं बना पाया।
0: सब भाग्य सितारों के खेल हैं नेताजी, वरना आपकी योग्यता में भला किसे संदेह हो सकता है।
4: आप तो भाग्य बदलने का दावा करते हैं ना।
0: पूजा पाठ के योगदान से क्या नहीं हो सकता नेताजी। प्रभु की इच्छा यदि हो तो जनता पल भर में पलटा खा सकती है।
4: तो पलट क्यों नहीं देते जनता का रुख? जिंदगी में एक ही तमन्ना, इस देश का कर्णधार बन सकूं, प्रधानमंत्री बनकर देश की जनता की सेवा में जीवन अर्पण कर दूं। पर यहाँ, अरे भाई पंडित जी, यहाँ तो MLA भी बनने के लाले पड़ गए।
0: सब्र का फल सदा मीठा होता है नेताजी, कल की चिंता छोड़कर कर्म कीजिए, एक दिन विजय अवश्य हाथ लगेगी।
4: पर कब? जब हाथ पैर जवाब देने लगेंगे।
0: नहीं नहीं, बहुत शीघ्र।

0: रात आपकी कुंडली देखते रहे।
1: अच्छा
0: जी, चक्रवर्ती राजाओं के संपूर्ण लक्षण मौजूद हैं आप में। सोम बड़ा शक्तिशाली है, परंतु शनि रास्ते में अड़ंगा लगा रहा है।
1: ऐसा?
0: हाँ।
1: तो फिर क्या किया जाए?
0: उपाय नेताजी, उपाय, अति उत्तम उपाय है हमारे पास।
1: लेकिन पंडित जी, इलेक्शन में सिर्फ एक महीना बाकी रह गया है।
0: कोई परवाह नहीं, हम एक महीने जप करेंगे, पाठ करेंगे।
1: वाह।
0: देखें जनता इस बार कैसे आपका साथ नहीं देती।
1: हाँ, वाह वाह।
0: परंतु एक बात स्पष्ट किए देता हूँ।
1: कहिए कहिए।
0: खर्चा बहुत आएगा।
1: ए पंडित जी, आने दीजिए। जहाँ एक बार पद संभाला, सब जनता से निकाल लेंगे।
0: वो आपकी इच्छा, हमें तो अपना कार्य भी शुरू करना है।
1: पंडित जी, ये शुरू के लिए इतना सा रख लीजिए, बाकी दो चार दिन में भिजवा देता हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार। यशस्वी भाव, यशस्वी भाव।
2: परिवर्तन, कामना चंद्रा की लिखी नाटिका का पहला भाग अभी आप सुन रहे थे। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण माथुर, राम सिंह, प्रकाश मिश्र, किशन भूटानी, सी एस ख्योरा, किशोर कपूर, अरुण बख्शी, अमरकांत दुबे, श्रीमती हेमलता दीपक और ज्योति शर्मा। तकनीकी सहायक आनंद पेबेकर। प्रस्तुति सहायक कब्बन मिर्जा। प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा। इसी नाटिका का दूसरा भाग आप कल के हवा महल कार्यक्रम में सुन सकेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मिराया वर्मा, फतेह, कनिगा कपूर और रविंद्र उपाध्याय की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है विशाल शेखर का और फिल्म

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। कमाल खान, सुजैन और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: के चंदन को कितना जानते हैं। संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है कजरारी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलरंभ मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी

0: अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
3: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
1: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु पुदुचेरी

टिहरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को

0: करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं

0: भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और सायरा बानो की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है अमन।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल नादान।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में वो गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।

0: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है इशारा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है माया।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज़ में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेंद्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत

0: घर है।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: नैना लागे रे जाने क्या

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद है शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958, फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: भी जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

छाया गीत में आज ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दुनिया के दो अलग अलग कोने, दो अलग अलग शख्स, वक्त के स्केल पर जाने कैसे घूमती है धरती कि दोनों आते हैं एक दूसरे के करीब, इतने करीब जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को, जैसे वो बने हों एक दूसरे के लिए।

दुनिया, जुल्मतों और बेदर्दी वाली ये दुनिया, यहां लगती हैं ठोकरें, यहां टूटता है भरोसा, यहां रोशनी के सागर में मिलता है अंधेरा, और कभी कभी लगता है कि सचमुच इस दुनिया में है कोई कोना जो हमारा अपना हो, जहां हम सुकून से जी सकें।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना। हम अभी हाजिर हुए।

बारिश सिर्फ आसमान की मुंडेर से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमेशा बादल अपना बटुआ खोलें और लुटाते रहें बूंदों की अशर्फियां हमारी धरती पर। कोई कोई बारिश मन के अंदर होती है और सुलग सुलग जाता है मन।

उदास है दिल, उदास दिल गा रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

0: आज के छाया गीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें,
1: न तुम हमें जानो,
2: न तुम हमें जानो।
0: फिल्म बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन।
1: मेरे दिल कहीं और चल,
2: घूमती दुनिया से दिल भर गया।
0: फिल्म दाग, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन। फिल्म मंजिल, योगेश राहुल देव बर्मन।

फिल्म ठोकर, मजाज लखनवी, सरदार मलिक। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच।

हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजूषाएं खुलने वाली हैं।
0: जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा।
1: हाँ।
0: हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है।
1: हाँ।
0: उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
1: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं।
0: जी मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को स्मृति दिवस, सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविन्द्र जैन।
1: रविन्द्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविन्द्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर से रविन्द्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविन्द्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कम्पोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: हाँ। और रविन्द्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविन्द्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तली फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविन्द्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविन्द्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविन्द्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविन्द्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से

0: हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी, और रविन्द्र जैन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविन्द्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविन्द्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे जिन दिनों हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियां उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं, उनमें यूं था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुने होती थी, लोक धुने थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा। और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी,
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
2: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
1: जी,
2: तो उसका कोई न कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
1: जी,
2: या फिर राम तेरी गंगा मैली का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
1: प्यार का सावन में जी हाँ,
2: जी हाँ, प्यार का सावन में
1: जी,
2: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है
1: जी,
2: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
1: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
2: जी,
1: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी, तो उनसे यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राजसाहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया
2: जी हाँ जी हाँ,
1: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
2: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाए तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
1: संगीत भारतीयों के जीवन में यानी हमारे जन्म से पहले से
2: जी
1: शुरू होता है, ठीक है ना
2: जी,
1: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है, तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है। और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, ये सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
2: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पर जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुने, गाने की धुने पहले बना दी जाती हैं
1: जी,
2: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भैया आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
1: जी,
2: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
1: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं, समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में

0: करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना, गजलों का भी गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
1: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
0: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य पे काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही है, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है, तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें, नज़्में, नाज शरीफ, हम इस तरह की चीजें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
1: अनुवाद काम।
0: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ, पर्शियन से सरल उर्दू में।
1: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
0: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
1: जी,
0: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
1: बंगला पे, उर्दू पे,
0: जी,
1: हिंदी में कर ही रहे हैं।
0: जी जी, हिंदी उर्दू, तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है, वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
1: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
0: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है, अच्छा, तो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशोदा जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
1: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
0: मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान है,
1: अपनी भाषा होती है। तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में?
0: उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए
1: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती।
0: जी नहीं।
1: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
0: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं। जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, ये श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
1: जी
0: सीता माता को कि वे राम जी के भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को

0: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविन्द्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
1: और जयंत जी, रविन्द्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविन्द्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती हैं। रविन्द्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलोडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविन्द्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओ, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों न हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्रीगंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुनें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
2: जी,
3: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
2: जी।
3: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
2: जी,
3: वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
2: जी।
3: तो अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
2: सही बात,
3: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
2: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोट क्यों नहीं बनाया
3: जी,
2: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए

0: भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो उसका असर भी तो
1: थोड़ा सा असर है। फिल्मों में ज्यादा असर है
0: जी,
1: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
0: अच्छा, एक चीज अब खासतौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
2: जी,
0: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
2: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान बिल्कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
0: जी,
2: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफी हेल्प मदद की इस फील्ड में और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
0: अच्छा,
2: तो ये वो तो मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे।
0: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
2: नहीं।
0: हाँ। जी,
2: मैं
0: जी।
2: लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हो, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम या कुछ भी उसके मतलब हो
0: जी,
2: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
0: जी जी, एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
1: ये तो देखिए अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं जिसमें उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं 3 मिनट में खत्म भी हो सकती है
0: जी।
1: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे 2 दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे
0: जी,
1: क्योंकि इतना वक्त नहीं है ऑडियंस के पास भी, इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है उसमें कम से कम 20 गजलें हों
0: जी,
1: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायर हो, कलाम हो।
0: अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसा ज्यादा नहीं।
1: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये?
1: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
0: जी।
1: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेर में हो जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
0: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
1: हाँ, एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
0: जी,
1: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
0: जी हाँ जी,
1: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था, उसके बाद सन सिटी में गए 7000 आदमी हॉल भरा हुआ, या इंडिया में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया। वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
0: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी
1: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आपकी कि वो

0: पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी। और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है, और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोरवयीन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी, और देखिए यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज दूँ और आपसे क्या क्या सवाल करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जे होता है फिल्मों की तरफ, क्योंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना आदिमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद आदिमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि च्वाइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहां वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है, और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख में चोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता, तो मैं कमाल अमरोही क्या चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की जरूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं, कि जी मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है, लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें, मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूं कि इल्मी शायरी अलग होती है, फिल्मी शायरी अलग, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत जरूरी है। जानिसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूंगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूं। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो जुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह रहा हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहां मलका आलिया रजिया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर बकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्कड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी, वो आपके चेहरा देखने के बाद آپ کے چہرے پر لکھے ہوئے بینک بیلنس کو بھی دیکھنا چاہتی تھی. بہت سے چہرے اچھے لگے, لیکن میں جو فاصلہ طے کر رہا تھا وہ ایک روٹی سے دوسری روٹی کا تھا. ندیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہم کو تو چاند میں نظر آتی ہیں روٹیاں. تو میری جو افیئرس رہے وہ یک طرفہ رہے. میں نے چاہا, مجھے نہیں چاہا گیا. میں نے انتظار کیا, کسی نے میرا انتظار نہیں کیا. میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہرا, کیونکہ پڑھی لکھی باہوش ہر لڑکی کو چہرے کے ساتھ بینک بیلنس اور جیب کے پیسے بھی دیکھنا چاہیے. اور اس وقت میرے پاس نہ فیوچر تھا نہ وقت تھا. میری تلاش روٹی کی تھی, دل کو تلاش محبت کی تھی. دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور وقت نکلے جا رہے تھے. تو کالج میں مجھے یاد ہے ایک لڑکی تھی, میں ایم اے کر رہا تھا انگریزی میں, تو وہ 45 کے اینگل میں بیٹھتی تھی جہاں میں بیٹھتا. پھر راستے میں جب باہر کالج مطلب کلاس روم کے باہر گارڈن تھا, اس گارڈن میں جب وہ آتی ہے تو گارڈن مکمل ہو جاتا ہے. وہ جدھر سے گزرتی تھی معلوم پڑتا تھا خود سنورتی تھی, بلکہ پورے ماحول کو سنوار دیتی تھی. میں نے اس زمانے میں ایک نظم بھی گئی تھی, وہ پھول پھول نظر ساملی سی ایک لڑکی جو روز میری گلی سے گزر کے جاتی ہے, سنا ہے وہ کسی لڑکے

से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बहार हो के तलाशे बहार करती है, न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है, कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे, मेरे वरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख।

प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली गई।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है?
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनके रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का
1: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में मैं सुंदर हूँ इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई जरा देख के चल।

पर धरकस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: है चूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज में एस एच बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानियां। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वधिकिया। असद भोपाली का लिखा दो गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म मैंने प्यार किया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वबद्ध किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। जी प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दरो दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी चांदनी को उतरते देखा था, चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें। कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को। कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ढोल ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर, उसी डर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी दर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों, हम जहां हैं आज, यह हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता, उनकी दरों दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सौंधापन, साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत। हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओ, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहां की गई पढ़ाइयां, तो बहुत सारी यादें हैं। और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं, तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज में, और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती है घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नमाखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती है। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बात हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

नूतन और देवानंद पर फिल्म आया गया ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाई नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैम्प केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी, जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोताओ, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाजें आती थी क्या।

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की, महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गांव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूं। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताजा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें जरूर बताएं। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नजर आए तो अच्छा लगता है, बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दीपा

दिवाली पर कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है, पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और न ही वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है। वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं पर हाँ कभी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है। बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और न जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोता, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की

बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ यादें हो तो आप ताजा कीजिए। लिखती हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनवाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों किस्साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन है। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहां हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं, जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहां आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे। एक तो ये सवाल आपको बताना है, और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो घर जहां से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहां पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था, तो आप हमसे जरूर ये बातें ताजा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए, जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना जरूरत पड़ती थी, ना ही फोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा, ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी, वो वही काम करती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है। ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है। और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था, नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे, हम लोग रेडियो खेलते थे तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मजा आता था, उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहां बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें बिगड़ती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपटकर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीत था श्रोताओ गंगा मैया तो है पेरी चढ़े बे इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में और कुमकुम नजर आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी जरूरी है जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पे सुहागा हो जाता था। रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन जो है वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था। बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे। हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी है कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओ मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा यह गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया, पुरानी यादों में खो गए, क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की आती है, उन्हें खुशता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं, घर की बातें होती हैं, वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत, इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है? जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था, ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था, लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना? ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओं, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल के हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुटकुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कहा

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे श्रोताओं। तो कुछ न कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मन चाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मन चाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने। इस गीत को सुनना चाहते थे काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे। नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी जी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे

श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने, और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने, और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर।

सुधीर गुप्ता, बबीता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार भगवती शकुंतला, और ये हमारे श्रोता हैं। इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेन्द्र बाबू, अरुज जी और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था। और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वॉर्निंग सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा ऋतु, अभी सुनाता हूँ।

0: कहाँ भैया?
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है,

0: लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ, पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
0: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ, ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ, वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे, तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं, मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी
1: होंगे। मगर
0: अनाम,
1: माँ इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू

0: कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान माँ मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना। हाँ मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: अब मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर
2: वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे से मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं है,
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
3: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं।
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा।

0: माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर माँ के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता, माँ कहती खाना खा, अनाम आता, खाना खाता। माँ कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
1: आ, आ, आ, अनाम, खाना खा, चल, घर चल, जा, बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो, सो जा,
0: चल,
1: उठ, उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल, उठ, चल, नाटक कर,
0: कर,
1: नाटक कर,
0: अच्छा
1: अभिनय कर, चल, तू, गुस्सा तू, हंस, खुलकर हंस,
0: बाजा बजा,
1: वायलिन बजा,
0: बस, बंद कर,
1: अब बंद कर,
0: चल,
1: कहना मान,
0: आज्ञा
1: मत डाल, खुश रह, आंसू मत रो,
0: खुलकर रो,
1: खुलकर रो,
0: खुलकर रो।
2: मुझे बच्चा बहुत अच्छा था, मुझे बच्चा बहुत अच्छा था, मुझे बच्चा बहुत अच्छा था। नहीं, अकेले ही जाना, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए बॉल मारूंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
3: अनाम
2: के लिए बॉल।
3: अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
4: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना। बस रितु,
5: और बजाओ ना नाम बजाओ।
4: बस रितु, अब कल।
5: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
4: मेरी मम्मी, पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
5: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
4: नहीं रितु।
5: क्यों?
4: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
5: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
3: वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
4: सुन रहा हूं।
3: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
4: क्या बात?
3: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूं, तुम्हारी क्या राय है?
4: मेरी राय कैसी?
3: तुम्हें दुख है?
4: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
3: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
4: किसने कहा?
0: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
3: अनाम, दिन भर से कहां गायब थे?
4: बाहर था।
3: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
4: शहर में घूम रहा था।
3: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
4: बस करो माँ।
3: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
4: ठीक है।
3: क्या ठीक है?
4: आगे से ख्याल रखूंगा।
3: कहाँ जा रहे हो?
4: सोने के लिए।
3: खाना तो खा लो।
4: भूख

0: ठीक है, जाओ।
1: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ, ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं, आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेस बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मुश्किल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। तीन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूँ, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि न होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया, कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है, मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही न चला। है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
4: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
4: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब से

0: सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई है। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है? धीरे धीरे
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो माँ के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
0: ये तुम्हारी भूल है माँ, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
1: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
4: अनाम भैया।
0: हाँ रितु।
4: वायलिन सुनाओ ना।
0: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
4: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: राम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी उसी के साथ हैं।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के मां बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।
1: समाचारों के अनुसार

एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है, आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है, जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था।

0: वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।